0: महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो, जुग जुग फेर बिटाइए ज्ञानी बुझता है। सात जुग रात संतोख का धर्म गिरथवा हो, तेरे रथ जति का जोर अगे रथवा हो। द्वापर रथ तपे का सात गिरथवा हो, कल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथवा हो। महला पहला।
1: राम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सत समावे ऋग कह रहा प्रभु। राम नाम देवा मैं सू नाय लय प्रच जय नानक तुम खुंत्र पाए जो मैं जो चली। चंद्रावल कान कृष्ण जादुम भया पार जात को पिले आया, बिंदरा बन में रंग किया कल में बेद थर्बन हुआ ना खुदाई लो पाया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चरे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार। आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए।

कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए हो पुराना सुटिया पी फिर पाइए हो नानक तग न तुटई जे तग हो वे चो।

0: तूटस पूत महला पहला
1: तगन इंद्री तगन नारी भलके थुक पवैन तुदा तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वित गया पे वते वड़ता गे वरा कतले पहाड़ कर हो कड़का गल्द सिरा हो सुन वेखो लोकाए हो वेडा मन अंधा ना हो सुजान।

0: जप माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज सुरी बगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद यो ना पे आवे ओईसा कुड़ी रास कुड़ा वापा कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक के ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड्डी का ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिर।

0: पहला जेकर सूतक मने है सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आन के जिया बाजना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सोए नानक सूतक बना तिरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जे जेवा सूतक कूड़की सूतक वेखना परत्र परत रूप कनी सूत कन पहला एतबारी खाए नान कंता आदमी बद्दे जंपुर जाए महला पहला
0: सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना

0: बोले तन मन फिका हुए फिको फिका सदिया फिके फिकी सो फिका दरगे सटिए मोह धुका फिके पाए फिका मूर्खा किया पाणा ले सजाए महला पहला
1: अंदर ओह झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सड़ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पटंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सचना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीबाने को कल में का हमा तुमा मेल दरले लेखा पीड़ छुट्टे नान का जो तेल पड़िया पे ही करना की।

आप करा एक साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसिया हरे आप कराए करे आप हो कैसे हो करीब का नान करना जिनकिया फिर

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोल वाहे गुरु, एक ओंकार, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें, प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लेंते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर है कारणाओ निधि आवै ताई, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राणि साहि साहाणि गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत ज्योत रूप हरि आप गुरु नानक कहायो तात अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमर दास अमरत शतर गुर रामह दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखहौ नैण सतगुर पूरा साह है त्रिभुवन जग तिस दा वणजारा रतन पदार्थ बेसुमार पाओ भगत लख परि भंडारा पार जात लख बाग विच काम तीन देवाग हजारा लखमियां लख गोलियां पारस दे पर्वत अपारा लख अमृत लख इंद्र लै होए सक के शिड़कन दरबारा सूरज चंद चराग लख रिद सिद निद बोहल अंबारा सबे वंड वंड दित्ते ओन पाओ भगत कर सच प्यारा भगत वछल सत गुर निरंकारा
ਸੋ ਕਹਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲ ਜਨ

सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूहे महला पंजवा तन सुहागन जो प्रभु पशन मान हुकम तज अभिमान प्रिय स्यो राती रलिया मान तन सुहागन जो प्रभु पशन मान हुकम तज अभिमान प्रिय स्यो राती रलिया मान सुन सखिए प्रभ मिलन निसानी मन तन अर्प ताज लाज लोकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पशुतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे बिना करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावे देख हदूर बिना करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावे देख हदूर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा तन सुहागन जो प्रभु पछानै मानै हुकम तज अभिमानै प्रिय स्यो

0: मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

कांड श्रीमन्मंगल स्वामी जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ स्वामी जी महाराज आप जी देव गुर शब्द नौकी आनंद साहिब जी की अरदास सुन चुक मुआप करनी सच्चे पातशाह जियो आप जी दे हरूर खड़ा प्रसाद जी भेद हाजिर है पर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण की आख्या बच्चो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे।

जाइए तिरंत न पारावरिया सब निदान दष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारावरिया राग यसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याओ संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट यंत्र सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े व सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे वड़ियावर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैं डासाई जो तो भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नीति आया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया
तुम दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपी करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर विख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडे पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी सरना। जिंतु नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिरन केह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा। जप तप

कह नानक हम नीच करम शरण परे की राख शर्मा जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साधन जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा

तरस पयोई तरस पया विहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै तरस पया विहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुरपार ब्रह्म। जिता समुंद सागर नीर भरिया, तीते औगुण हमारे। दया करो किस मेर उपाव, डुबदे पत्थर तारे। जीवड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुकम पिशान, सुख होवै दिन राती। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चट्टी। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह, शिरशाह जिस पास बैठिया सोही, सबना दावे सा। सज्जन सच्चा पातशाह, शिरशाह जिस पास

सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया रखन हारे रखियो बारिक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरणाई जाकी सेव न बिरथी जाई रहाउ कर मह सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने भये दयाला नानक विघ्न न लागै कोई।

दुख दारू सुगरो पया जा सुखता न हो तू करता करना मैं ना ही जाहू करना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंतरा जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भारपू रहे तू सच्चा साहिब सिफ सवाले हो जिनकी थी सो पार पया कहो।

0: अनासी हर खवंत अनंतरो निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत पढ़िया दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाख्यो तेह जन तृप्त अघाए जे ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार जे ठाकुर सो प्रसन्न प्यो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
2: सच सुभा देवान सच सच सच्चे पै तरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजो संसार आप अपुल न पुल्लो रतन नाम अपार के मनो पवे अमुल्लो जय कृपाल होयो को बिंद सर्व सुख तिन हो पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुर फिर जो न आए
3: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिए ब्रह्मादक सनकाद से गुणंत ना पाए अगो ग्यो नहीं जाए पूर सर्वरिया समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
4: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेहलक पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत तेहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कर उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
5: अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक सफारे कर आज फुन

0: घाट की लाज। सतगुर नाम एकले मन जपे धड़ा, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। तारण तरण खेणा मात्र जाको दृष्ट तारे, शब्द रद बिचारे काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो। जाको देख सदृद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मेले धोवै जियो। सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अनभव नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने।
2: एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लै दिदे बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो।
3: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो, अब नाहे अवर सर काम।

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है, कर नौ निदिया वैताए। सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदा।